0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Brick veut vous donner un gros coup de main pour votre déménagement avec le Grand Solde. Économisez jusqu'à 33 % de rabais sur les sofas et les sofas sectionnels. Jusqu'à 20 % de rabais sur les meubles de chambre à coucher et de salle à manger. Jusqu'à 40 % de rabais sur les matelas sélectionnés. Et modernisez votre cuisine. Obtenez jusqu'à 15 % de rabais sur les gros électroménagers sélectionnés lorsque vous en achetez 3 ou plus. Plus, vous pourriez gagner l'un des 4 articles de la collection Shaq et O'Neal Home. Aucun achat requis. Certaines exclusions s'appliquent. Détails en magasin. Déménagez et économisez gros chez Brick. Plus d'économie pour vous.
2: एक हर्फ तसल्ली का, एक लफ्ज मोहब्बत का, खुद अपने लिए उसने लिखा तो बहुत रोया। पहले भी शख्सियतों से खाई थी शिकस्त उसने, लेकिन तेरे हाथों से हारा तो बहुत रोया। आसान तो नहीं अपनी हस्ती से गुजर जाना, उतरा जो समंदर में दरिया तो बहुत रोया। जो शख्स न रोया था कभी तपती हुई राहों में, दीवार के साये में बैठा तो बहुत रोया।

0: You're listening to Culture of Punjab. We are changing Canada one person at a time.
1: कभी गौर किया है, महसूस किया है, इनफैक्ट अल्फाज देने की कोशिश की है बारिश की बूंदों, बिजली और बादलों के उस सीन को। अच्छा बताएं कैसा लगता है खिड़की से बारिश की बूंदें देखना, अपने आप को उन बूंदों की नजर करना, जब बिजली जोर से कड़क कर अपने गुस्से का इजहार करती है और जवाब में बादल हंस कर उसे मनाता है। इन एहसास में जीना कैसा लगता है, बारिश के संग आंख मिचोली खेलना कैसा लगता है।

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
3: अच्छा आपको बताऊं कि रिश्ते बनाने और तोड़ने में आपकी जुबान का बहुत बड़ा हाथ होता है। हमारे घर के पास एक लेडी रहती हैं जो हमेशा कहा करती थी कि जुबान शिरी मुल्क गिरी। एग्जैक्टली नहीं पता बट शायद इसका मतलब ये है कि अगर जुबान अच्छी हो तो मुल्क तक फतेह किया जा सकता है। यकीनन अगर आपका बिहेवियर एटीट्यूड और बात करते हुए अल्फाज अच्छे होंगे तो जो ऑलरेडी आपके रिश्ते हैं उनके साथ तो जस्टिस होगा ही, नए रिश्ते खुद ब खुद आपके साथ जुड़ते जाएंगे।

चाहे मैं मोहब्बत हूँ पर मेरा कोई एक रूप तो नहीं, फिर कैसे पहचानोगे मुझे? मैं बताऊँ, हथेली सामने रखना कि सब आंसू गिरे उसमें, जो रुक जाए होंठों पर समझ जाना कि वो हूँ मैं। कभी जो चांद को देखो तो तुम यूँ मुस्कुरा देना, जो चल जाए हवा ठंडी तो आंखें बंद कर लेना, जो झोंका तेज हो सबसे समझ जाना कि वो हूँ मैं, जो ज्यादा याद आऊं मैं तो तुम रो देना जी भर के, अगर हिचकी कोई आए समझ जाना कि वो हूँ मैं, अगर तुम भूलना चाहो मुझे भुला भी देना, मगर जब सांस तुम लेना तो समझ जाना कि वो हूँ मैं।

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Rick veut vous donner un gros coup de main pour votre déménagement avec le Grand Solde. Économisez jusqu'à 33 % de rabais sur les sofas et les sofas sectionnels. Jusqu'à 20 % de rabais sur les meubles de chambre à coucher et de salle à manger. Jusqu'à 40 % de rabais sur les matelas sélectionnés. Et modernisez votre cuisine. Obtenez jusqu'à 15 % de rabais sur les gros électroménagers sélectionnés lorsque vous en achetez 3 ou plus. Plus, vous pourriez gagner l'un des 4 articles de la collection Shaq et O'Neill Home. Aucun achat requis. Certaines exclusions s'appliquent. Détails en magasin. Déménagez et économisez gros chez Brick. Plus d'économie pour vous.
2: संगीत रुदी खुराक है,
3: आत्मा दी आवाज है,
2: कुदरत दा वरदान है
3: और प्यार दी जुबान है।
2: जिंदगी जिंदगी
3: जिंदगी प्यार है,
2: जिंदगी सांझ है, खिमा है,
3: जिंदगी एक रंगमंच भी है।
2: इस रंगमंच ते हाजिर है वतन दी मिट्टी दी महक ते दिलां दी प्रीत नाल लबरेज
3: कल्चर ऑफ पंजाब
2: कल्चर ऑफ पंजाब।

0: कल्चर ऑफ पंजाब ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: अच्छा, अच्छे कर्मों का फल, उस लड़की को आंखें वापस मिल गई और तब उसको इस बात का पता चला कि वो लड़का जो उसको बहुत चाहता था वो भी देख नहीं सकता था, ब्लाइंड था। लड़के ने अब उससे पूछा, क्या अब भी तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की ने साफ इनकार कर दिया। अपने टूटे सपने लेकर वो लड़का उस लड़की की जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया, सिर्फ ये कहकर कि मेरी आंखों का ख्याल रखना, देखना कि कभी इनमें आंसू ना आए।
2: जानी जानी तूने पी है।

0: कल्चर ऑफ पंजाब से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया।
1: पंजाब दे चुटकले कहानियां ते साडियां चटपटियां गल्लां
2: सुनो साडे YouTube चैनल कल्चर ऑफ पंजाब ते।

हम अक्सर अपनी जिंदगी निकाल देते हैं उस बेस्ट टाइम ऑफ आर लाइफ को ढूंढते हुए। मेरी एक कजन है जो 30 साल की होने वाली थी और वो बहुत अजीब फील कर रही थी इस बारे में। उसको लग रहा था कि शायद सबसे खूबसूरत टाइम उसकी जिंदगी का पीछे रह गया। और हुआ यूं कि वो रोज की तरह अपने बर्थडे वाले दिन जिम गई और एक 80 साल की औरत को वहाँ वर्कआउट करते देख हैरान रह गई। कुछ सवाल पूछे उसने उस औरत से, वो क्या थे, बात करेंगे अबाउट इट बट आफ्टर दिस नेक्स्ट नंबर।

कहा कि जब वो छोटी थी और उसके माँ बाप उसे खूब प्यार देते थे, वो टाइम उसकी जिंदगी का सबसे ब्यूटीफुल टाइम था। फिर जब वो स्कूल जाने लगी, नई चीजें सीखने लगी, तो वो टाइम भी बहुत खूबसूरत लगा। फिर नौकरी मिली, शादी हुई, दैट वॉज द बेस्ट टाइम ऑफ हर लाइफ। फिर फैमिली शुरू हुई, अपने बच्चों को आगे बढ़ता देखा, बहुत खूबसूरती से निकला वो वक्त भी। और आज वो 80 साल की है, तंदुरुस्त है, सबको प्यार देती है, सबसे खूब प्यार लेती है, खूब रिस्पेक्ट लेती है। तो अब वो कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसे लग रहा है कि ये टाइम उसकी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल टाइम है। तो देखिए, एक सोच ही है जो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना सकती है। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही होगा। हर दिन ऐसे जियो जैसे ये आखिरी दिन हो। खूब प्यार और रिस्पेक्ट दो और वापस पाओ बहुत सी खुशियां और बहुत सा प्यार।

आंखों में बस के दिल में समा कर चले गए, ख्वाबीदा जिंदगी थी जगा कर चले गए, चेहरे तक आस्तीन वो ला कर चले गए, क्या राज था कि जिसको छिपा कर चले गए, रग रग में इस तरह वो समा कर चले गए, जैसे मुझी को मुझसे चुरा कर चले गए, आए थे दिल की प्यास बुझाने के वास्ते, एक आग सी वो और लगा कर चले गए, लब थर थरा के रह गए, लेकिन वो ए जिगर जाते हुए निगाह मिला कर चले गए। अभी आपने एंजॉय की जिगर मुरादाबादी की कुछ बेहतरीन नज्मों की कलेक्शन में से एक ब्यूटीफुल सी नज्म आपके अपने शो कल्चर ऑफ पंजाब में प्रीत के साथ।